0: कहा जाए लेकिन वो एवरीवन
1: Louisiana 345 Hotel Quebec Oscar on a Acura.
2: Civil.